0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की। वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पारित। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा समाप्त करने की अधिसूचना जारी की। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज। ब्रिटेन के सांसदों का संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या मामले में हस्तक्षेप का आह्वान। बंगाल की खाड़ी में मालवाहक जहाज डूबा, चालक दल के 24 सदस्य थे सवार। भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया। और भारत की मानसी लाठर ने स्लोवाकिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। तन्वी और कोमल को कांस्य पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचार और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव को बढ़ाना है।
1: एक सोशल मीडिया पोस्ट में नितिन नवीन ने कहा कि भाजपा ने वंदे मातरम की ऐतिहासिक विरासत के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पार्टी ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 19 अगस्त को कांग्रेस कार्यक्रमों में वंदे मातरम के गायन को केवल पहले दो पैरा तक सीमित करने वाली वर्ष 1937 के प्रस्ताव को पुनः लागू किए जाने के निर्णय की कड़ी निंदा की। पार्टी ने राष्ट्रीय गीत के रूप में संपूर्ण वंदे मातरम के सम्मान, गरिमा, विरासत और राष्ट्रीय महत्व को बनाए रखने का संकल्प लिया। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। आनंद और प्रिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। मंत्रालय का मानना है कि टेलीविजन उद्योग और डिजिटल मीडिया के बीच पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है। टेलीविजन के लिए विज्ञापन अवधि सीमा 2006 में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत लागू की गई थी। तब से लेकर आज तक टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उस समय टीवी चैनलों को प्रसारित करने के मुख्य माध्यम केबल टीवी की प्रसारण क्षमता सीमित थी और उपभोक्ताओं के पास बहुत कम विकल्प थे। केबल टीवी क्षेत्र के डिजिटलीकरण के बाद DTH, HIST और IPTV सहित सभी प्लेटफॉर्म अब डिजिटल

0: सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की दो दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारती क्रीड़ांगन में ईस्ट बंगाल एफसी और मोहन बागान सुपर जायंट्स के बीच डूरेंट कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है और किसी को भी अहिंसा के इन मूल्यों को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। श्री सिंह ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार की सर्वोपरि कर्तव्य है।
2: अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि किसी को की हत्या मत करो, किसी को मारा नहीं जाना चाहिए। अहिंसा का अर्थ है मन, वचन और कर्म से किसी भी रूप से किसी को पीड़ा न पहुंचाई। अहिंसा के मूल्य को हमारी कमजोरी किसी भी सूरत में नहीं समझी जानी चाहिए। हमारे अहिंसा को गलत मत समझो, अहिंसा और शांति हमारी संस्कृति है।
1: रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने खरीफ और आगामी रबी मौसम के लिए उर्वरक विभाग की तैयारियों की कल समीक्षा की। नई दिल्ली में कल एक बैठक में उन्होंने कहा कि किसानों को उर्वरकों की निर्बाध और समय पर आपूर्ति करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत को विश्व की फार्मेसी की अपनी पहचान से आगे बढ़कर अनुसंधान, नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों के बल पर विश्व की प्रयोगशाला के रूप में उभरना होगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में स्वास्थ्य सेवा में AI को बढ़ावा देना विषय पर आयोजित हेल्थ केयर समिट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की परिवर्तनकारी क्षमता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि AI दवाओं की खोज में तेजी ला सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी भाग लेंगी। कार्यक्रम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता, द्विपक्षीय बैठक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल होंगे। बैठक के समापन पर ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 अनुकूलन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। इस क्षेत्र में पाकिस्तान की सेना की निर्मम कार्रवाई में सैकड़ों लोगों के मारे जाने और घायल होने के बाद ये अपील की गई है। इस क्षेत्र में कड़ी नाकाबंदी और कर्फ्यू के कारण संचार व्यवस्थाएं ठप हैं। इस बीच बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में बलूच यकजहती कमेटी ने आम नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना के ड्रोन हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे सरकार प्रायोजित आतंकवाद करार दिया है। इसमें 4 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। BYC ने बताया कि शुक्रवार को मस्तुंग के खड़कुचा इलाके में एक ड्रोन हमले में 4 मजदूर मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इनमें चीनी नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। एक रिपोर्ट।
0: अधिकारियों ने बताया कि ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर ये दुर्घटना हुई। जहाज MV ओशन विनर के चालक दल में चीन के 20, म्यांमार के 3 और एक बांग्लादेशी नागरिक सवार था। जहाज ओडिशा से करीब 72,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क लेकर 20 अगस्त को पारादीप तट से सिंगापुर के लिए रवाना हुआ था। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया जा चुका है। समाचार से मैं पायल शर्मा।
1: भारतीय वायुसेना ने

0: हाल ही में दो अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यासों में सफलतापूर्वक भाग लिया है। इनमें ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक 2026 और मलेशिया में उदार शक्ति 2026 अभ्यास शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
1: रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि दो देशों के बीच इन अभ्यासों से भारतीय वायुसेना ने परिचालन क्षमता, उन्नत सामरिक समन्वय और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। मंत्रालय ने कहा है कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन वायुसेना द्वारा आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक के दौरान भारतीय वायुसेना ने अपने अग्रिम पंक्ति के राफेल विमानों के साथ 20 से अधिक भागीदारी देशों की वायुसेनाओं के साथ मिलकर अभ्यास किया। उधर मलेशिया में आयोजित सैन्य अभ्यास उदार शक्ति के दौरान भारतीय वायुसेना के चालक दल ने रॉयल मलेशियन वायुसेना के साथ मिलकर उच्च तीव्रता वाले लड़ाकू मिशन और संयुक्त सामरिक युद्ध अभ्यास किए। आरजू और प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने जयपुर में अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में हुई अनियमितताओं के लिए एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रभावित परीक्षार्थियों के लिए पुनर्परीक्षा अगले महीने की पहली तारीख को जयपुर में आयोजित की जाएगी। स्लोवाकिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने 3 पदक और जीत लिए हैं। मानसी लाठर ने रजत पदक और तन्वी गुंदेश मकदूम और कोमल ने कांस्य पदक हासिल किए। और भारत और श्रीलंका के बीच वर्तमान क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज कोलंबो में शुरू होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से खेला जाएगा। भारत पहला टेस्ट 165 रन से जीतकर श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अन्य खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में कल विश्व एथलेटिक्स रजत स्तरीय प्रतियोगिता में भारत के रोहित यादव ने भाला फेंक और मुरली श्रीशंकर ने लंबी कूद स्पर्धाओं में जीत हासिल की। रोहित ने अपने छठे और अंतिम प्रयास में 87.68 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने 8.07 मीटर की छलांग लगाकर पहला स्थान हासिल किया। महिलाओं की लंबी कूद में एनसी सोजान पहले, शैली सिंह दूसरे, जबकि मुबस्सिना मोहम्मद तीसरे स्थान पर रहीं। नाइजीरिया के चुकवू एबुका एनेक्वेची ने पुरुषों के शॉटपुट का खिताब जीता, जबकि इटली के जेन वियर दूसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा खेल मंत्रालय ने अगले महीने से जापान में शुरू होने वाले एशियाई खेलों के लिए 492 सदस्यीय दल को मंजूरी दे दी है। इस बार एथलेटिक्स के सर्वाधिक 73 प्रतिभागियों को शामिल किया गया है।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और विदर्भ में दिनभर तेज वर्षा का अनुमान है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत में भी अगले 2-3 दिन तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। इस बीच अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मंगलवार तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों की नई दिल्ली में बैठक की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भाजपा जेंजी से जुड़ेगी, 14 से 25 वर्ष के युवाओं से जुड़ने के लिए पार्टी अभियान चलाएगी। जनसत्ता का शीर्षक है, राष्ट्रगीत के सम्मान से किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं। भाजपा ने वंदे मातरम पर कांग्रेस के निर्णय की आलोचना की। अमर उजाला के अनुसार कांग्रेस के पूरा वंदे मातरम न गाने के खिलाफ प्रस्ताव पास, विकसित भारत का उद्घोष भी वंदे मातरम। दैनिक जागरण ने वंदे मातरम पर घिरी कांग्रेस शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वंदे मातरम के दो ही पद गाने की कांग्रेस की जिद से ये साफ है कि सोनिया गांधी ने 15 अगस्त को पार्टी मुख्यालय पर उसके पूर्ण गायन पर आपत्ति जताई थी। पंजाब केसरी का शीर्षक है, गोरखा मुद्दे पर समझौते की तैयारी, सरकार ने गठित की समिति, चिकन नेक को मिलेगी अभैध सुरक्षा। गृहमंत्री अमित शाह, गोरखा नेताओं और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच हुई बैठक का उद्देश्य वर्तमान समस्याओं का समाधान करना। नवभारत टाइम्स ने विदेश मंत्री जयशंकर का बयान देते हुए लिखा है, पाक यूनिक आतंक फैलाता है। बोले, चीन के साथ अच्छे रिश्ते दोनों के हित में। अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने कहा, भारत US संबंध ट्रंप और मोदी की दोस्ती पर आधारित। राजस्थान पत्रिका ने नया युद्ध शीर्षक से दिया है, ईरान की घेरेबंदी के बीच अमेरिका में साइबर हमले, ड्रोन मिसाइलें शांत, अब US और ईरान के बीच साइलेंट वॉर। अमर उजाला के अनुसार मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानी सेना में असंतोष, रावलपिंडी की सुरक्षा बढ़ाई गई, पूर्व सैनिकों के संगठनों में भी बढ़ी नाराजगी।

0: सुरक्षा बलों पर हमले को बताया कारण। दैनिक जागरण का शीर्षक है, पहली सितंबर से ई बोर्डिंग पास दिखाकर हो सकेगी विदेश यात्रा, एयरपोर्ट पर फिजिकल बोर्डिंग पास और स्टैंपिंग व्यवस्था खत्म होगी। दैनिक भास्कर ने खास खबर में दिया है, चैटबॉट नहीं बुजुर्ग सबसे बड़े लाइफ कोच, संकट में सर्च के बजाय संवाद करें, समाधान के साथ नया नजरिया भी मिलेगा। 1500 अमरीकी बुजुर्गों की युवाओं को सीख, जो हाथ में है उसी पर फोकस करें। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार कांगड़ा की अंशिका और प्रवीण राणा बने प्रेरणा स्रोत, एक साथ की एलएलबी, बेटी टॉपर और पिता तीसरे स्थान पर। राजस्थान पत्रिका के अनुसार 3 साल बाद विदेश में टेस्ट सीरीज जीतने उतरेगी भारतीय टीम, श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट की श्रृंखला में टीम इंडिया 1-0 से आगे।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नव नियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की, वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पारित। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा समाप्त करने की अधिसूचना जारी की। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज। ब्रिटेन के सांसदों का संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या मामले में हस्तक्षेप का आह्वान। बंगाल की खाड़ी में मालवाहक जहाज डूबा, भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया। और भारत की मानसी लाठर ने स्लोवाकिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता, तन्वी और कोमल को कांस्य। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Akashwani presents Morning News. Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Prime Minister Narendra Modi meets BJP's newly formed team at party headquarters in Delhi. Party passes resolution regarding honour and protection of historic legacy of Vande Mataram. Center notifies removal of 12-minute advertisement duration cap for television channels. India to host BRICS sports ministers meeting at Vishakhapatnam in Andhra Pradesh today. British parliamentarians seek UN intervention to end bloodshed in POJK by Pakistani forces. Cargo ship with 24 crew members sinks in Bay of Bengal off Odisha coast. Indian Coast Guard and Navy launch rescue operation. And in wrestling, Mansi Lathar wins silver medal at Under 20 World Championships in Slovakia. Tanvi and Komal claim bronze medals. Prime Minister Narendra Modi held a meeting with the newly appointed national office bearers of the Bharatiya Janata Party at its headquarters in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Modi said that organizational meetings are all about new ideas and perspectives aimed at strengthening the party and deepening its connect with the people. BJP President Nitin Nobin also held a meeting with the newly appointed national office bearers of the party. During the meeting, the BJP passed a resolution regarding the honor and protection of the historical legacy of Vande Mataram. A report.
3: BJP President Nitin Nabin said that the BJP team is committed to working with full dedication and devotion for expanding the base of the party to realize the resolve of Prime Minister Narendra Modi to make India a developed nation. In a social media post, Mr. Nabin said that in the resolution regarding the honor and protection of the historical legacy of Vande Mataram, the party has condemned and unequivocally opposed the decision taken by the Congress Working Committee on 19th of this month to reaffirm its 1937 resolution restricting the singing of Vande Mataram to its first two stanzas at Congress programs. He said that the party is resolved to undertake a nationwide campaign through BJP workers to take the history, meaning, national significance and glorious legacy of Vande Mataram to every corner of the country. Following the conclusion of the first meeting of the national office bearers, a national workshop was held with the state presidents, organization general secretaries, among others, for the Seva Sankalp Abhiyan. Briefing the media, BJP National General Secretary Vinod Tavre announced that the BJP will run a month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan to mark Prime Minister Narendra Modi's birthday on 17th of September. With Anand and Priya, Soumya Sharan, Akashwari News, Delhi.
2: The central government has notified the removal of the 12-minute advertisement duration cap for television channels. The decision has come into effect with notification of the amendment in the Cable Television Network Rules 1994 in the Gazette. Earlier, Information and Broadcasting Ministry said that in view of the changes that have occurred in the TV broadcasting sector, a need was felt to revisit the stipulations relating to advertisement duration.

0: people when reports last came in. Devdutt Padikkal continued his excellent form, scoring another half a century and was unbeaten on 55, while Shubman Gill was batting on 43. Both players have stitched together an unbeaten 102-run partnership for the third wicket. Earlier, India won the toss and opted to bat. Both Indian openers were dismissed in the first session. KL Rahul scored 18 before being dismissed by Lahiru Kumara, while Yashasvi Jaiswal fell for 45 to Asitha Fernando. India have made one change to their playing 11, with seasoned Madhya Pradesh all-rounder Sairansh Jain making his test debut. Kuldeep Yadav has been ruled out due to an infection. The hosts have also been forced into changes. Dinesh Chandimal has been ruled out after suffering a concussion, while Nishan Madhushka has been dropped. Kamil Mishra is making his debut, while Pasindu Suryabandara also returns to the playing 11. In the FIH Hockey World Cup, the Indian women's team will take on Australia tonight. India must win this match to stay in contention for a semi-final berth. The Pool E match will begin at 10:30 p.m. India's qualification will also depend on the result of the earlier match between China and the Netherlands. India need China to lose that match. If China win, India will be eliminated even with a win over Australia. Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal today highlighted the need to reduce manual intervention in sanitation work through mechanization. Speaking at the Foundation Day celebrations of the National Commission for Safai Karmcharis in New Delhi, Mr. Meghwal stressed the importance of safety measures, protective equipment, training, health insurance and proper monitoring. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi urges space startups to build robust ecosystem and attract global talent, extends greetings on National Space Day. BRICS Sports Ministers meeting underway in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar to embark on a two-day visit to Russia today. Orange alert for heavy to very heavy rainfall issued for isolated places over Chhattisgarh, Odisha and coastal Andhra Pradesh today. Iran warns neighbours against joining US economic campaign against Tehran. In cricket, second and final test match of the series between India and host Sri Lanka underway in Colombo. And in the FIH Hockey World Cup, Indian women to take on Australia in a must-win match for a semi-final berth tonight. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष स्टार्टअप्स से मजबूत इकोसिस्टम बनाने की अपील की ताकि वे वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकें। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं दी। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज दो दिवसीय रूस दौरे पर रवाना होंगे। छत्तीसगढ़, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। ईरान ने पड़ोसी देशों को आगाह किया कि वे अमरीकी आर्थिक अभियान में शामिल न हों। भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच कोलंबो में जारी और हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत के लिए मैच जीतना जरूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
2: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ।

0: पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
1: स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। श्री चांदना ने बताया कि उनकी कंपनी ने 3 कारखाने स्थापित किए हैं। इस वर्ष 18 जुलाई को श्री चांदना की कंपनी ने भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज अहमदाबाद में 3rd राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्पेस साइंस की इस विधा को प्राइवेटाइजेशन करके भारत के लिए अपार संभावनाओं का द्वार सृजित किया गया और जिस तरह की क्षमता प्रोफेसर साराभाई से लेकर के आज तक भारत के महान वैज्ञानिकों ने जिस तरह का मुकाम हासिल किया है, भारत जो आज एक मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में खड़ा है, आने वाले समय में विश्व का अग्रणी और लीडरशिप स्टेटस को प्राप्त करेगा।
1: कार्यक्रम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक वीएन राव भी उपस्थित थे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: देश आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। हर वर्ष 23 अगस्त को यह दिन चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की स्मृति में मनाया जाता है। वर्ष 2023 में इस दिन चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। इस उपलब्धि के साथ भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया और साथ ही विश्व की अग्रणी अंतरिक्ष शक्तियों में अपनी जगह बनाई। संचार और मौसम पूर्वानुमान से लेकर नेविगेशन और आपदा प्रबंधन तक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी लोगों के दैनिक जीवन में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक इस समय आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में चल रही है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के खेल मंत्रियों और शिष्टमंडल के प्रमुखों का स्वागत किया। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच खेलों के माध्यम से सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जा रही है। बैठक के अंत में साझा घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। ब्रिक्स युवा अलायंस ने आज लगातार दूसरे दिन ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ विषय पर चर्चा का आयोजन किया। ये ऑनलाइन चर्चा मुख्यतः वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार पर केंद्रित थी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वस्थ जीवन शैली के लिए साइकिल चलाने को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की है। डॉक्टर मांडविया ने आज विशाखापट्टनम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग कार्यक्रम के बाद मीडिया से कहा कि साइकिल चलाना फिट इंडिया आंदोलन का अभिन्न हिस्सा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सहअध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 27 अगस्त तक जापान की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वे तोक्यो, नागोया और ओसाका का दौरा करेंगे।

0: नौसेना का प्रशिक्षण जहाज सुदर्शनी और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार जहाज पर सवार चालक दल के सदस्य और प्रशिक्षु पुर्तगाल की नौसेना और भारतीय समुदाय के साथ पेशेवर और सांस्कृतिक आदान प्रदान करेंगे। ये आईएनएस सुदर्शनी का 15वां पुर्तगाल दौरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ में भी दिन में ऐसे ही मौसम की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार बारिश से प्रमुख नदियां उफान पर हैं।
1: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के नए क्षेत्र के कारण उड़ीसा के कई हिस्सों में फिर से भारी बारिश हो रही है। आईएमडी ने आज केंदुझर, मयूरभंज, रायगढ़, कोरापुट और कलाहंडी में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। कलाहंडी के थुआमूल रामपुर में पिछले 24 घंटे में 345 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो राज्य में सबसे ज्यादा है। लगातार बारिश के बीच बंसाधारा और सालंदी जैसे नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जबकि बाढ़ प्रभावित इलाके अभी भी जोखिम की स्थिति में है। 7 जिलों में हालिया बाढ़ से लगभग 14 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और राहत व बहाली का काम जारी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज सुबह हल्की बारिश हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि युद्धपोत निर्माण, अपतटीय पोत और अन्य रक्षा क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। श्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन री शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड से जुड़े 5 केंद्रों के भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए। रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार आंतरिक सुरक्षा के मामले में पूरा सहयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 11,000 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा कि GRSE ने हाल के समय में 100 से अधिक पोत उपलब्ध कराए हैं। GRSE की परियोजनाएं शिपयार्ड की विनिर्माण क्षमता और बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी। इन परियोजनाओं से समुद्री बलों और अन्य रक्षा जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। यंत्र इंडिया लिमिटेड के मेटल एंड स्टील फैक्ट्री ईशापुर में 750 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से 2 केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इनसे स्वदेशी धातुकर्म और रक्षा विनिर्माण को मजबूती मिलेगी। चौथे चरण की औद्योगिक क्रांति और ऊर्जा कुशल तकनीकों से लैस ये दोनों केंद्र उच्च स्तर के विनिर्माण को बढ़ावा देंगे। आयात पर निर्भरता कम होगी और रक्षा, रेलवे तथा रणनीतिक क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रेजाई ने पड़ोसी देशों को ईरान के खिलाफ अमरीका के आर्थिक अभियान में शामिल न होने की चेतावनी दी है। उधर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर अमरीकी इलाका बताए जाने के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने फिर कहा है कि जब तक अमरीका अपना रुख नहीं बदलता, हॉर्मुज बंद रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने हॉर्मुज पर अमरीकी दावों को खारिज करते हुए श्री ट्रंप के बयानों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य और अमरीका के बीच की दूरी 7,000 मील से भी अधिक है और ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमरीका ईरान पर और अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारियां कर रहा है। ईरान ने कहा है कि इससे उसकी अर्थव्यवस्था को और अधिक नुकसान होगा और प्रमुख व्यापारिक साझेदारों तथा खासकर चीन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो ईरान के कच्चे तेल का एक प्रमुख आयातक बना हुआ है। समाचार कक्ष से मुनीष शर्मा।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा के साथ व्यापार वार्ता को स्थगित किए जाने और कनाडा को अमेरिकी राज्य बनाने की इच्छा एक बार फिर व्यक्त करने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार विवाद और गहरा गया है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कनाडा पर आरोप लगाया कि वो अमरीकी किसानों पर काफी अधिक शुल्क लगा रहा है। उधर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि अमेरिका की मांग को अनुचित और व्यापार समझौते की अनदेखी करने वाली है। श्री कार्नी ने कहा कि कनाडा अपने कामगारों, किसानों, परिवारों और कारोबार की रक्षा के लिए अमेरिका जितना ही शुल्क लगाएगा। प्रधानमंत्री कार्नी ने स्पष्ट किया कि कनाडा स्वतंत्र रूप से व्यापार समझौता वार्ता करेगा और इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

0: जापान में राजधानी टोक्यो के उत्तर पूर्वी प्रांत इबाराकी में आज तड़के 5.9 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से पानी की पाइप फट गई और कुछ इलाकों में यातायात सेवा पर भी असर पड़ा। भूकंप का केंद्र 70 किलोमीटर की गहराई में था। और अब कुछ खेल खबरें। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 184 रन बना लिए हैं। इस मुकाबले में सारांश जैन भारत के लिए डेब्यू कर रहे हैं। भारत ने पहला मुकाबला 165 रन से जीता था। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। और अन्य खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन।
1: ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में एक पारी और 51 रन से हरा दिया है। दोनों टीम श्रृंखला में 1-1 की बराबरी पर रहीं। टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर और भारत चौथे स्थान पर है। उधर महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। पूल ई का ये मैच रात 10:30 बजे शुरू होगा। नीदरलैंड्स 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं।
0: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष स्टार्टअप से मजबूत इकोसिस्टम बनाने की अपील की ताकि वे वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकें। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं दी। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज 2 दिवसीय रूस दौरे पर रवाना होंगे। छत्तीसगढ़, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। ईरान ने पड़ोसी देशों को आगाह किया कि वे अमरीकी आर्थिक प्रतिबंध अभियान में शामिल न हों। भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच कोलंबो में जारी। और हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत के लिए मैच जीतना जरूरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम एक ही कलाकार।

0: राजमाधुरी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को वंदना जोहरी को
1: और वंदना को
0: प्रेम भरो अभिवंदन।
1: वंदना सखी, देखो जैसे ही सामान लगे ना, मुझे तो मायके की बहुत याद आवे।
2: हाँ।
1: पेड़न पे पड़े झूले और गीत गाती सखी याद आवे।
2: हाँ बहना, मायको तो मायको होए, हमारो बचपन तो वही मायके में बीतो है ना। कितने हंसी ठिठोली इनकी गूंज वह आंगन में बसी है, सावन की झरी के संग वे गीत हूँ याद आमे।

0: सखी बस जेन आए कि हम झूला झूलते और गीत गाते, भैया ते झगड़ो हूँ खूब हो तो जब भैया अलबेटा में फंसाए देते।
1: और बहन बहन भाई के झगड़े में एक लंग सबरी बहने रह जाती और दूसरे लंग सबरे भाई।
0: हाँ
1: पर देखो ना, ब्याह के बाद याई बंधन के काजे हैं, भाई बहन एक दूजे के काजे हैं, हुड़के हैं, याद करे हैं, कितेक लोक गीत या के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।
0: हाँ सखी, भैया के काजे बहना दरवाजे पे खड़ी प्रतीक्षा करें और भैया की राह देखें, इन सब में हूं कितेक आनंद आए और कितेक हुड़क होए माए की जावे की।
1: हाँ, आनंद तो प्रतीक्षा में हूँ होए बहना, पर देखो अब तो मोबाइल ने, मेट्रो ने, गाड़ी ने समय की प्रतीक्षा को कम कर दियो है।
0: हाँ, और सखी रक्षाबंधन तो पूरे देश में मनाया जाए, पर जो हमारे ब्रज में सनूने की प्रथा चली आ रही है ना, वो सबते अनूठी है, क्योंकि ब्रज में दामाद को घी बूरो खवायो जाए यह दिन।
1: हाँ, और चुटकी हुले में के कहा घी भूरो खाए बिना जाए रे।
0: हाँ, और सनूने पे दीवार पे गेरुते लीप के खड़िया ते सनूने रखी जाए।
1: बेना श्रवण कुमार हूँ बनाए जामे, माता पिता को तराजू में बिठाए भये। देखो बेना, जे त्योहार ऐसा है कि जामे रंग बिरंगे धागे, पवित्र बंधन ते

0: आत्मा की गहराई तक जुड़े हैं और यह पवित्र सात्विक बंधन की प्रथा सदियों पुरानी है। यही रक्षा सूत्र ने देवतान की रक्षा करी जब इंद्राणी ने इंद्र को राखी बांधी।
1: हाँ सखी, और यमुना ने यमराज को राखी बांध के अमरता को वरदान प्राप्त कियो, और द्रौपदी ने हूँ श्री कृष्ण को धागो बांधो, तो देखो ना कैसे श्री कृष्ण ने द्रौपदी की चीर बढ़ाए के लाज राखी। या त्योहार पे बहना जब भाई की कलाई पे राखी बंधे तो जे ही सोचे के बुरे वक्त में हमारा भाई हमारी रक्षा करे।
0: और बहना, इतिहास और लोक साहित्य ते कई कहानी निकसे हैं। एक कहानी है कि जब सिकंदर दुनिया जीत पे निकसो हो तो वाकी रानी ने राजा पुरु को धागा भेज अपने पति की रक्षा की याचना करी, और यही तरिया मेवाड़ की रानी कर्मावती ने बहादुर शाह के आक्रमण ते बचाव के काजे हुमायूं को राखी बांधी और रक्षा की कामना करी।
1: सखी बड़ो ही पवित्र त्योहार है जे भाई बहन के रिश्ते को, जा मैं भैया राखी बंधवाए को आतुर रहवे और बहन की बाट देखे, और जो सखियां और बहनें आते हैं बेहू अपने की बाट देखे।

0: बड़ा ही मधुर गीत आपने सुनवायो संवेद स्वर में। बहना सावन की ऋतु मिलन और विरह को संगम सी लगे, कहूँ तो बाट चोहती सखियाँ और कहूँ पियाते मिलन या भैया के आइबे की खुशी। सच में ही सावन कैसे लोक जीवन को प्रभावित करे और गीतन में जे भाव प्रकट हुए हैं।
1: हाँ सखी, तुम सही कह रही हो। सावन में गाए जाए वाले लोकगीतन में प्रेम और संस्कृति की झलक मिले, तो आज यही विषय पे भेंट वार्ता सुनवाए दें। जब भेंट वार्ता का विषय है ब्रज में सावन के लोकगीतन में लोक जीवन, प्रेम और संस्कृति की मधुर अभिव्यक्ति, यहाँ पे जानकारी दे रही हैं डॉक्टर पूर्णिमा अग्रवाल और भेंट कर रही हैं श्रुति पुरी।
2: राधे राधे श्रोताओं, सावन के संग ही संग ब्रज की धरती पे हरियाली सी छाई रही है, घटा घिर रही हैं, बिजुरी चमके हैं, मोर बोले हैं और बांगन में झूले पड़ गए हैं। आज की ब्रज माधुरी में हम बात कर रहे हैं ब्रज की उन पुरानी मल्हारन की, जिनमें केवल सावन की फुहार ना है, बल्कि ब्रज को लोक जीवन, नारी के मन की बात, प्रेम भक्ति रिश्तेन की मिठास और समाज की अनेक तस्वीरें ने दिखाया गया है। आज हमारे संग हैं डॉक्टर पूर्णिमा अग्रवाल जी, ब्रज भाषा लोक संस्कृति की समर्पित साधिका हैं। पूर्णिमा जी राधे राधे।
3: सभी श्रोता भैया बहनन को राधे राधे।
2: देखो पूर्णिमा जी, सावन को नाम सुनते ही ब्रज में जो हरियाली धरती है, कदम्ब की डार है, झूला झूलती सखियां हैं, यमुना की लहर और दूर दूर तक कहीं कान्हा की मुरली की तान सुनाई देवे है, तो ब्रज में ऐसा लगे है कि सावन बरस रहे है। और सावन को जो महीना हुए है ना, वो मन के भीजवे को महीना है, और या भीगे मन ते निकले हैं हमारी ये लोक गीत मल्हार। तो हम आपते जे जानना चाह रहे हैं पूर्णिमा जी, के सावन के लोक गीतन में, सावन की मल्हारन में कैसे लोक संस्कृति चित्रित है जाए है, या के बारे में हमें कछु बताओ।
3: हाँ श्रुति बहन, मैं तो यही कहूंगी कि ब्रज की मल्हार केवल गीत ही ना है, ब्रज के लोक मन की आवाज है।
2: बिल्कुल।
3: तो मैं आपको एक मल्हार सुनाऊं। सावन आयो और ब्रज में झूला ना पड़े, मल्हार ना गाई जाए, ऐसो कैसे है सके है।
2: बिल्कुल।
3: बागन में झूला पड़े हैं, रेशम की डोरी से झूला सजे हैं, सखी झूले हैं और मन में राधे श्याम की छवि बसे है। यही भाव की एक सुंदर मल्हार है।
2: हाँ सुनाओ।

0: सावन की या मल्हार में बहन प्रकृति भी है और भक्ति भी है।
1: बिल्कुल सही कह रही हो। और अभी हाल ही तीज निकल के गई है, तो
0: हाँ,
1: तीज की हु कछु व्याख्या करो सावन के गीतन में।
0: तीज तो ब्रज की बेटी और बहुन को बहुत प्यारो त्योहार है। तीज आई तो बागल में झूला पड़ गयो और पीहर की याद भी जगवे लग जाए,
1: सच
0: जो
1: में।
0: बहन बेटी अपनी ससुराल में हुए हैं ना। तो मैं भाई की एक मल्हार सुनाऊं। अरी बहना तीजन को आयो त्योहार, बाग

0: गए या मल्हार में श्रुति बहन, जो बेटी अपनी ससुरार में है ना, वो अपने बारे में वर्णन कर रही है और
1: हाँ
0: वो पियर जायबे को सपनों देख रही है।
1: हाँ और वाकई मन की कसक कितनी बढ़िया या मल्हार के माध्यम से बताई गई है कि कैसे छटपटाए रही है कि
0: हाँ
1: अपने वीर के संग वो अपने पीहड़ चली जाए और वहां पे सब घरवारे के संग झूला झूलवे को तरस रही है। लेकिन ऐसे और भी कई लोक चित्र होंगे ना जो मल्हारन में प्रत्यक्ष परिलक्षित है रहे होंगे, जिनके बारे में हूँ कछु बताओ।
0: हाँ बहन, हाँ तो बहन, सावन के महीना में बहू बेटी सब सज धज के हरी हरी चूड़ी पहन के कुआं पे पानी भरवे जाएं और आपस में बात करें हैं, और कछु तो अपने मन में मगन है कि पानी भरती रहें और जो अगल बगल में बात होती रहे ना, वह सुनती रहें। तो ऐसा ही एक चित्रण में मल्हार के द्वारा आपको सब कुछ सुनाऊं। बहू अपनी सास से कहे है कि मैं पानी भरवे गई और मैंने वहां एक बात सुनी। तो वह की सास कहे कि क्या सुनी, तो वो मल्हारन के माध्यम से वह अपनी भावनाएं व्यक्त करे है।
1: बिल्कुल सुनाओ।
0: हाँ वो कहे है

0: बोलती, वो अपनी सास से कह रही है कि सासु
1: हाँ
0: लाज मैंने कहा सुनो मेरी बात समझो। तो सास कह रही है हाँ बहू बता। एक लुगाई सासुल यों कहे अरी बहना तेरे बलम को दूजो ब्याह कुए पे मैना बोलती।
1: पूर्णिमा जी, देखो लोकगीत में कितना बढ़िया चित्रण किया है। मैना के मुख सौ अपने हृदय की बात कह रही है। और एक बात और है ना कि लोकगीत तो लोक अभिव्यक्ति का माध्यम है, तो आगे या गीत में कहा कहे हो गए है।
0: हाँ बहन वो कह रही है अपनी सास से पूछ रही है कि मेरे पति की दूसरी शादी की दूसरे ब्याह की चर्चा क्यों चल रही है। तो पूछ रही है के तोरी सासुल मेरी मैं हीन बाप की अरे सासुल कह तो मैं लाई थोड़ो दान कुए पे मैं ना बोलती। फिर सास कह रही है
1: जवाब दे रही है।
0: हाँ।

0: दान कुए पे मैना बोलती।
1: कितना प्यारा लिखा है।
0: हाँ बहन, ये तो आपसी बातचीत को एक माध्यम है जाए आपस में, या मल्हार
1: बिल्कुल।
0: के माध्यम से सब बात है जाए। अब वो बता रही है कि वो दूसरी शादी के बारे में क्यों सोच रहे
1: हाँ,
0: हो।
1: कि कहीं मेरे रूप रंग पे तो सवाल ना
0: हाँ, तो
1: आए।
0: सास बतावे फिर अपनी बहू को। बता रही है कि तू तोरी बहुअल मेरी सामरी, तू तोरी
1: ओए
0: बहु।
1: होए।

0: बोलती
1: बहुत ही
0: मेरी
1: सुंदर,
0: बहुवल।
1: बहुत सुंदर। देखो लोकगीत जो हुए हैं ना, हमें केवल मनोरंजन ना करावे हैं, बल्कि समाज की जो बीती हुई तस्वीर है ना, वह को सामने लाए के रखे हैं। तो पूर्णिमा जी, कहा सावन की मल्हारन में

0: सामाजिक जीवन की लोक गाथाएं भी मिले हैं।
1: हाँ महल, देखो एक ऐसी ही मल्हार है कि पहले समय में अपनी बेटी को, बालकन को ब्याह छोटी उम्र में कर दियो जाओ, फिर वो बेटी ब्याह के बाद कई साल तक अपने मायके में ही रहे करेगी, और जब तक वो जवान है जाए उनके मन में प्रेम प्यार की बात हिलोर लेवे लग जाए, तो उनको फिर कहूँ दूसरी जगह प्रेम चक्कर चल जाए करे हो कब। तो ऐसी ही एक मल्हार चंदना के रूप में हमारे लोक जीवन में बड़ी प्रसिद्ध है कि चंदना को विवाह छोटी उम्र में है गयो, फिर वा के बाद वो अपने मायके में रही, तो वा को बाद में जब वो थोड़ी बड़ी भई समझदार भई तो वा को प्रेम एक समला नाम के सुनार के संग है गयो। और जब बाकी भाभी को ये बात पतो चली तो वा ने अपने पति से कही, यही को चित्रण मैं मल्हार के द्वारा करूं।
0: बिल्कुल।
1: तो वो अपने पति ते कह रही है और चंदना को भी समझा रही है, तीजन चरचा हीरी चंदना चल रही जी ए जी।

0: जी जगत हंसाई चंदना तेरी है रही जी।
1: समझाए रही
0: हाँ,
1: है। हाँ
0: गामन में तो बड़ी जल्दी फैल जाए ना ऐसी
1: हाँ
0: बात।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हाँ, चंदना की जो भाभी है ना, वो अपने पति से, या कि चंदना के भैया ते कह रही है

0: उसके भैया ने चिट्ठिया लिखी, चिट्ठिया को मतलब धोरे पे कारो लाला जी ने लेके दियो
1: कितना बढ़िया
0: जी
1: लिखा है ना, धोरे
0: धोरे
1: पे
0: पे
1: कालो,
0: कारो।
1: यानी
0: हाँ
1: सफेद कागज पे कारी स्याही तो लिख दियो
0: चिट्ठी
1: है।
0: लिख दी
1: हाँ।
0: एक।

0: कितनी बढ़िया बात कही है चंदना की मल्हार जी, हमें बतावे है कि लोकगीतन में केवल प्रेम और त्योहार नहीं है, बल्कि समाज की मर्यादा, स्त्री की स्थिति और वह समय की सामाजिक व्यवस्थाओं दर्ज है। तो हम आपते पूर्णिमा जी ये पूछना चाह रहे हैं कि ब्रज में कान्हा की भी तो लीलाएं हुआ करती, तो कान्हा की लीला भी का मल्हारन में अलग अलग रूपन में मिले है?
1: हाँ बहन, बिल्कुल अलग अलग रूपन में मिले हैं। कान्हा तो ब्रज के कण कण में बसे हैं, कहीं मुरलीधर, कभी गोपाल, कभी नटखट कान्हा और कभी मनिहारी बन के ब्रज की नारिन के बीच में लीला करे हैं।
0: बिल्कुल।
1: यहाँ कान्हा को राधा के रूप में वर्णन ना है, यहाँ कान्हा राधा का रूप बनाए के ना है हमें। यहाँ तो कान्हा चूड़ी बेचने वाली मनिहारी को रूप धरे हैं। लोकगीत में या मल्हार में वाको बड़ो सुंदर चित्रण है।

0: राधे का।
1: देखो कान्हा को ये रूप उनकी चंचलता हास परिहास ब्रज की लोक लीलान को कितना
0: सामने
1: जीवंत,
0: लावे हैं।
1: हाँ
0: हाँ हाँ वे
1: जीवंत
0: सामने
1: बनाए
0: लावे
1: देवे हैं।
0: हैं।
1: और देखो बहन, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि अब आपकी जो मल्हार में भक्ति और दाम्पत्य स्नेह को जो भाव है वो बहुत गहरा दिखे है, जैसे आपने मैना की बात करी या जैसे आपने जो अभी चंदना को मल्हार सुनायो, तो बामे दाम्पत्य जीवन के बारे में हूँ कछु लक्षण से दिखे हैं बिनको कछु बयान मिले है, तो दाम्पत्य जीवन की भी बात मल्हारन में आई है।
0: हाँ बहन बिल्कुल आई है। या को सबसे बढ़िया एक चित्रण है सुदामा की पत्नी द्वारा अपने पति को भगवान के पास भेजनो और उन पे विश्वास करनो, और वो सुदामा

0: का
1: कितना मार्मिक है।
0: और कहा कह रही है, फूटी परात तय सब फूट गए, मेरे स्वामी थाली के है गए 9-10 टूक, चले जाओ स्वामी द्वारिका।
1: यही तो है कि ब्रज के लोक गीतन में दुख के बीच में हूँ आस बनी रहवे है। तो पूर्णिमा बहन, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँ हूँ कि जैसे संयोग को मल्हार हुए है, वैसे ही विरह की भावना हूँ, विरह के मल्हार हूँ तो ब्रज में बहुत प्रचलित हैं, और वो तो बहुत ही मार्मिक रूप में मिले हैं। जैसे एक मौकू याद आए रहे हो है कि जब ते गए हैं मोहन छोड़ के, ब्रज को
0: हाँ
1: भयो है बेहाल, पड़े हैं लाले जान के,
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत
1: ऐसा ही
0: सुंदर।
1: और मल्हार आपकी स्मृति में आए रहे हो तो हमारे श्रोतान से
0: मेरी
1: साझा
0: स्मृति
1: करो।
0: तो एक सबते मार्मिक और सबते ही विश्वास की और करुणा की एक मल्हार है, जो आप समझेंगे कि रुक्मणी और कृष्ण को प्रेम। तो रुक्मणी जी आंसू बहाती बहाती पाती लिख रही हैं और श्री हरि पे अपनी खबर भेज रही हैं और विनती कर रही हैं

0: जी बहन, या
1: हम्म,
0: आंखन ते नीर बरस रहे हो है, पर मन श्री हरि को पुकार रहे हो है, विरह में भी भक्ति बस गई है।
1: कितना मार्मिक है, हृदय पसीज सो जाए है ऐसी मल्हारन को सुन के। पर देखो, एक मुँह को याद आए रही है, मैंने बहुत पहले सुनियो हो कि जब भगवान पे विश्वास की बात है, और ये भी एक द्रौपदी की मल्हार मैंने सुनी काई, बहुत समय पहले सुनी, आपको कच्ची स्मृति में आ रही है, बहुत ही मार्मिक सी
0: बहन
1: मल्हार
0: भाई,
1: है।
0: हम कैसे भूल सके हैं, वो तो हमारी धरोहर है बहन। हाँ, सभा के बीच में द्रौपदी संकट में ही और अपने साम्रे को मल्हार के द्वारा पुकार रही, मेरी बहना द्रौपदी तो रोवे ठाड़ी, दुर्योधन खींचे साड़ी, लाज बचइयो
1: बचइयो
0: मेरे
1: मेरे
0: साम्रे,
1: साम्रे,
0: मेरी बहना।
1: आगे कहा कह रहे हैं या मल्हार में?
0: हाँ बहन, स्त्री की लज्जा ही सबसे बड़ो गहनो है, और बाकी लाज उतर रही है तो वो कन्या के आस लगाए के बैठी है
1: बिल्कुल
0: और कह
1: साची कह
0: रही
1: रहे हैं।
0: है कि चीर

0: रे।
1: कितना भावुक वर्णन है ना। और या को एक और कड़ी तो है या कि एक
0: हाँ
1: और कड़ी
0: बहन,
1: है।
0: ये तो सबसे बढ़िया है, वो बता रही है कि कैसे हारे कहाँ वे हो। हाँ, मेरी बहना जुआ में पतने हारी, रोवे द्रौपदी सी नारी, लाज बचियो मेरे सामरे।
1: कितना अटूट भरोसा दिखाई दे
0: हाँ
1: रहे हो है
0: सुती
1: युवा
0: बहन,
1: में। ये तो बहुत मर्म की बात हमने करी, पर एक बात बताओ पूर्णिमा बहन, कि जब मल्हार में ज्यादातर जो हुए है ना, वो श्यामा श्याम के श्रृंगार को वर्णन हु मिले हैं, बिनकू हिंडोरा पे बैठे वह भी दिखा में हैं, बिनकू झूला झूलामत वह भी दिखा में हैं, और जो विहार करते वह भी दिखा में हैं। तो ऐसा हु कछु श्रृंगार को सुंदर वर्णन आप हमें हमारे श्रोतान को बताओ मल्हार के माध्यम से।
0: हाँ बिल्कुल बहन। ब्रज की नारी अपने श्याम के रूप को देख के बहन उनकी छवि को मन में बसाए ले है और कह रही है रुक्मन कि मेरी मैया मोइना सुहावे शिशु, पाल मेरो तो पति श्याम
1: कितना
0: है।
1: सुंदर लिखा है।
0: हाँ बता रही है मोर

0: मेरी
1: वाह
0: बहन।
1: बिल्कुल
0: या को भाव तो आप समझ गई होंगी जब उनको रिश्तों
1: बिल्कुल
0: शिशुपाल के संग करने की सोची ना उनके पिताजी
1: बिल्कुल। और
0: भैया
1: देखो
0: ने।
1: कितना सुंदर वर्णन किया है, मोर मुकुट हु है, वैजंती माल है, हाथन में मुरली है, और शाम के या रूप को ब्रज में यही की भक्ति करी जाए है, प्रेम बरसायो जाए है यही रूप पे, और प्रेम और भक्ति दोनों यही रूप में तो बसे हैं। तो पूर्णिमा जी, आज आपने सावन की मल्हार के माध्यम से ब्रज के लोक जीवन, प्रेम भक्ति और सामाजिक जीवन की बहुत सुंदर तस्वीर हमारे श्रोतान के सामने रखी। आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने हमें ब्रज के लोक जीवन, प्रेम भक्ति, नारी मन और संस्कृति ते बेजोड़ तरीका से जोड़ दियो है। यही मधुर भाव के साथ हम आपको हृदय से अभिनंदन करे हैं और आप ते विदा लेवे हैं। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे हैं भेंट वार्ता। जानकारी दे रही हैं डॉक्टर पूर्णिमा अग्रवाल और भेंट करता हैं श्रुति पुरी। अब यही के संग आज को ब्रज माधुरी कार्यक्रम यहीं संपन्न हुए है। मोय यानी वंदना जोहरी को
3: और मोय यानी के वंदना को
2: देव अनुमति नमस्कार।
3: कार्यक्रम प्रस्तुत करता
2: विवेक कुमार तोमर।
4: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं हमारे नन्हे मुन्ने बाल श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो किड्स।

0: हेलो दोस्तों, हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सीएम श्री स्कूल सेक्टर 21 रोहिणी के विद्यार्थी हैं। आज हम आए हैं आकाशवाणी केंद्र के एफएम गोल्ड चैनल के
1: रेडियो क्विज प्रोग्राम में।
0: मैं हूं अनन्या, आपकी रेडियो दोस्त। चलिए मेरे दोस्तों से मिलते हैं।
2: मैं अक्षत कक्षा 8वीं से।
3: मैं सौम्या कक्षा 7वीं से।
4: मैं अक्षिता कक्षा 7वीं से।
5: मैं तन्मय कक्षा 8वीं से।
6: मैं सबरीन कक्षा 8वीं से।
0: तो दोस्तों, आज हमारे पिटारे में है अनेक छोटी छोटी मगर प्रेरणादायक कहानियाँ और कविताओं का खजाना। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं हंसने को, गर्व करने को, भावुक होने को? क्योंकि हम भारत की बात करेंगे जो हमारे दिलों में बसता है। वैसे सौम्या, इस बात से मुझे याद आया, आपको एक कहानी लेकर आई है।
3: हाँ जरूर, क्या आप मेरी कहानी सुनना चाहोगी?
0: जरूर जरूर।
3: दोस्तों, कहानियाँ सुनना जो सबको पसंद है, आधुनिक मानव का विकास भी तो एक सुंदर कहानी है। आज मैं आप सभी के सामने भारत की अनेकता में एकता विषय को लेकर एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है रंगों की एक ही डोर। कहानी छोटी है लेकिन दिल छू लेने वाली है। तो चलिए हम सब मिलकर इस कहानी के सफर पर चलते हैं। दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले की एक छोटी सी सोसाइटी में एक नया सांस्कृतिक पार्क बन रहा था। पार्क के बीचों बीच एक बहुत बड़ी कैनवस लगाया गया, जिस पर पूरे भारत की एक साझी पेंटिंग बनानी थी। इसके लिए अलग अलग राज्यों से आए 4 बच्चों को चुना गया। असम से अंधता, पंजाब से मनप्रीत, तमिलनाडु से कार्तिक और राजस्थान से आया कबीर। पहले दिन जब चारों बच्चे पार्क में मिले तो सबने अपनी अपनी कला दिखानी शुरू करी। मनप्रीत ने ढोल और सरसों के खेत बनाए। कार्तिक ने अपने रंगों से सुंदर मंदिर और नारियल के पेड़ उकेरे। अंधता ने बिहू नृत्य की आकृति

0: बनाई और कबीर ने रेत के टीले तथा रंग बिरंगी प्यारी प्यारी सुंदर कठपुतलियां बना दी। लेकिन जब शाम को उन्होंने पेंटिंग को दूर से देखा तो वह बहुत बिखरी सी लग रही थी। लग ही नहीं रहा था कि यह एक ही कैनवस है। सब अपनी अपनी तस्वीर को बेहतर बताने लगे। तभी सोसाइटी के दादाजी वहां आए। उन्होंने बच्चों को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, बच्चों, तुम सबने अपनी अपनी जगह की तो सुंदरता को उकेर दिया, लेकिन एक बात बताओ, इस चित्र में भारत कहाँ है? कार्तिक ने पूछा, दादाजी, भारत तो इन सब में है ना? दादाजी ने कहा, ये सब अलग अलग मोती हैं। जब तक इन्हें एक धागे में ना पिरोया जाए, यह माला नहीं बनेगी। अगले दिन चारों बच्चों ने एक अनोखी योजना बनाई। मनप्रीत के खेतों के ऊपर से बहती हुई नदी को कार्तिक ने अपने नारियल के बागों से जोड़ दिया। कबीर के राजस्थान के रेगिस्तान की सीमाओं पर अंधता के असम की हरी भरी चाय की पत्तियां बिछा दी और सबने मिलकर बीचों बीच एक विशाल तिरंगा फहराता हुआ बनाया, जिसकी छाव में ये सारे दृश्य एक दूसरे से गले मिल रहे थे। जब पेंटिंग पूरी हुई तो ऐसा लग रहा था मानो पूरा भारत एक ही सांस ले रहा हो। भाषा अलग थी, पहचान अलग थी, खान पान अलग था, लेकिन कला के उस कैनवस ने सबको एक कर दिया। दोस्तों, ऐसा ही तो है अपना प्यारा भारत। यहाँ अनेक धर्मों, जातियों, भाषाओं, बोलियों, खान पान, नृत्य कला आदि को मानने वाले लोग रहते हैं, मगर जब एक भारत की बात आती है तो हम सब भारतीय बन जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भी तो यही कहा है, पहले और सबसे अंत में हम सब भारतीय हैं। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। जय हिंद।
1: इतना देशभक्ति प्रेम देखकर मानो मेरा दिल बहुत ही खुश हो गया। इसी बात पे मुझे एक गाना याद आ रहा है।

0: अक्षता, तुम्हारे पास भी तो एक सुंदर कविता थी। क्या तुम वो हम सबको सुनाओगी?
1: जरूर जरूर, मैं सबको अपनी प्यारी सी कविता जरूर सुनाऊंगी। आज आपके लिए एक बहुत प्यारी सी लोरी लेकर आई हूँ, जिसका विषय है एक लोरी शहीदों के नाम। निंदियां आना मीठी मीठी, जब बल के झपकाऊं मैं, नमन शहीदों को तुम करना जब

गाऊं मैं। तो चलिए अब मैं इस मीठी सी निंदिया में उन महान वीरों से मिलना चाहती हूँ जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। आजाद जति नश फाक उल्ला से।

बुध को देखूं और सुने आऊं मैं, स्वामी विवेका गौतम बुद्ध को देखूं और सुने आऊं मैं। निंदियां आना मीठी मीठी जब पल की झपकाऊं मैं। वीरता उम्र की मोहताज नहीं होती। अब मैं उन बाल वीरों के सपने के बारे में बताना चाहूंगी जिन्होंने छोटी उम्र में ही अद्भुत साहस किया। गुरु गोविंद सिंह के चार साहबजादे जिनको बाल में ही दीवारों में चिनवा दिया गया था। जोरा जीत जुजार फते सा, जोरा जीत जुजार फते सा, बालक वीर बन आऊं मैं।

वीर गाथा केवल और केवल पुरुषों तक सीमित नहीं है। अब मैं उन वीरांगनाओं के सपनों के बारे में बताना चाहूंगी जिन्होंने साहस और त्याग की मिसाल कायम की।

0: थी जब पल के झपकाऊं मैं, नमन शहीदों को तुम करना जब उनमें खो जाऊं मैं, जब उनमें खो जाऊं मैं। धन्यवाद।
1: अरे वाह, इसी बात पे मुझे एक गाना याद आ रहा है, सुनना चाहेंगे आप लोग?
2: हाँ हाँ जरूर जरूर।

0: सबरीन, तुम्हारी आंखें कुछ लाल लाल सी लग रही हैं। लगता है तुमने रात भर कहानियां ही लिखते में अपनी आंखों को दर्द दिया है बस।
1: हाँ, क्या करूं।
2: सबरीन, आप ना टीवी कम देखना आज और अपनी आंखों को आराम देना, तो आपकी आंखों की लालिमा चली जाएगी।
0: ठंडे पानी से आंखों को धुला करो सुबह सुबह बहुत अच्छी तरीके से।
3: आप घर जाकर 15 मिनट अपने आंखों के ऊपर खीरा रखना
4: और अपनी आंखों के आसपास हमेशा सफाई रखना।
5: आप टीवी और फोन बहुत कम देखना।
2: वैसे अगर हम आंखों के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो मैं बता देती हूँ, 25 अगस्त से नेत्र पखवाड़ा आ रहा है और ये 8 सितंबर तक चलेगा।
0: अरे वाह,
4: इस नेत्र पखवाड़े से तो हमें काफी सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी।
1: किसी को इसका उद्देश्य पता है?
0: नहीं, आप क्या बताएंगी?
1: इसका उद्देश्य ये है कि ये लोगों को नेत्रदान के प्रति प्रेरित करता है और समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करना है।
0: अरे वाह, कितनी अच्छी सोच है इसकी।
3: दोस्तों, यह मौसम बारिश का है। अगर इस मौसम में गीत संगीत के साथ चाय पकौड़े हो जाए तो बात ही क्या। बरसात की बात की है तो क्यों ना हम अपने विद्यालय की छात्रा साक्षी दीदी से कजरी का गीत सुने।
6: हाँ, जरूर।

0: अरे रक्षाबंधन भी तो आ रहा है, चलो अब उसके बारे में बात कर रहे हैं।
1: हाँ, चलो जरूर।
2: वैसे सौम्या, तुमने क्या सोचा है रक्षाबंधन के बारे में?
0: मैं तो अपने भाई से काफी सारे तोहफे मांगूंगी और उसको सबसे प्यारी राखी बांधूंगी ताकि वो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करे।
2: और अक्षिता, तुमने?
3: मैं तो अपने भाई को कितनी भी प्यारी राखी बांध दूं, देगा तो बेको वो वैसे भी कुछ भी नहीं।
2: कैसा भाई है। अक्षत, तुमने क्या सोचा है अपनी बहन को देने के लिए?
4: मैं अपनी बहन को ढेर सारी चॉकलेट दूंगा।
2: बस चॉकलेट ही?
4: और क्या
3: अपनी बहन को

0: बस चॉकलेट से मनाओगे?
1: हाँ बस।
2: अरे ये तो बहुत छोटा सा गिफ्ट है, क्या वो खुश हो जाएगी चॉकलेट से?
3: छोटा है लेकिन मेरी भावनाओं से भरा है।
4: हाँ, वैसे भी भाई बहनों को तोहफों से ज्यादा भावनाएं चाहिए होती हैं।
0: ये भाई बहन के बीच का प्यार जताता है।
2: और इससे हम ये भी सीखते हैं कि हमें हमेशा अपने भाई बहनों की रक्षा करनी चाहिए।
0: हाँ, एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है ताकि वो उसकी सुरक्षा करे, उसके साथ रहे।
3: और एक भाई भी राखी बनवाने के बाद वह सारी चीजें करता है जिससे कि उसकी बहन सुरक्षित रहे। और हाँ, मैं अपनी बहन के लिए चॉकलेट्स के अलावा रेडियो पे एक गाना भी डेडिकेट करना चाहूंगा।
2: कौन सा?
4: कौन सा?

0: दोस्तों, बातें तो बहुत हो गईं, अब समय हो गया है घर जाने का। तो आप तैयार हैं घर चलने को?
1: हाँ।
0: तो चलो अब घर चलते हैं। लेकिन लेकिन लेकिन अगले

अभी हमारे नन्हे मुन्ने बाल श्रोता सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो किड्स। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर।

0: स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक शाम के 4 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम स्वांग, किस्सा गोपी चंद का।
1: नमस्कार। आज के कार्यक्रम में लोक संगीत विधा स्वांग, किस्सा गोपीचंद। आकाशवाणी दिल्ली के ग्रेडिट कलाकार केशव कुमार और साथी को, केशव कुमार हैं गोपीचंद और पूजा राम हैं रानी पाटमदेव, कोमल चौधरी बहन चंद्रावल, परवेश भाटी हैं गुरु गोरखनाथ, अभिषेक भाटी हैं गुरु भाई, मोहित भाटी गुरु भाई और खेमचंद फोगाट हैं हारमोनियम पर, प्रदीप लहरी हैं ढोलक पर, सुभाष चंद नगाड़ा पर, हरीश कुमार पैड पर और लोकेश कुमार हैं बैंजो पर। तो हम शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति स्वांग, किस्सा गोपीचंद।

0: दर्शकों की सेवा में प्रस्तुत है स्वान किस्सा राजा गोपीचंद। धारा नगरी यानी धौलागढ़ के राजा पद्मसेन, जिनका इकलौता पुत्र था गोपीचंद और इकलौती पुत्री थी चंद्रावर, राजा की मृत्यु के पश्चात गोपीचंद राजा बन जाते हैं। साथियों, गोपीचंद की मां का नाम था मैरावंती, उनके 16 रानियां थी और 12 बेटियां थी, लेकिन पुत्र नहीं था। एक रोज की बात, बड़ी रानी पाटमदे, जिसको एक स्वप्न दिखाई दिया, सपने में राजा गोपीचंद साधु के बाने में दिखाई देते हैं। दिल दहल जाता है रानी पाटमदे का। सुबह होती है, उदासी घूम रही थी राजा गोपीचंद, पूछने लगे, महारानी क्या मैं इस उदासी का कारण जान सकता हूँ?
1: महाराज, मुझे सपना आया है और सपना भी ऐसा कि कोई भी रानी ये नहीं चाहेगी कि उसका ये सपना पूरा हो। मैं आपसे अपने सपने का जिक्र करना चाहती हूँ महाराज।
0: महारानी, सपने आल जंजाल हुआ करते हैं, सपने की बात कोई सत्य नहीं हुआ करती। जन क्या दिखाई दे जा सपने में, कह करके बताइए महारानी।

0: प्रेमी बंधु, इस तरह से सपने का सारा हाल महारानी पाटन दे महाराज गोपी जी को बताती है। मां बैनावंती एक रोज अपने पुत्र गोपीचंद को महलों में स्नान करते हुए देख लेती है। स्वर्ण जैसा शरीर, सोचने लगी ये कंचन जैसी काया एक दिन पिता पद्मसेन की तरह काल का ग्रास बन जाएगी, क्यों ना अपने बेटे को अमर करा दिया जाए। प्रेमियों, कहने लगी गोपीचंद, तू गोरखनाथ का शिष्य बन जा, अगर तू अमर हो जाएगा तेरी सूरत भी देखती रहूंगी और मेरे मन को तसल्ली रहेगी कि मेरा बेटा अमर है। मना करते हैं गोपीचंद मैया, योग साधना बहुत ही कठिन काम है, लेकिन मां की जिद के आगे हार जाते हैं, जा करके गोरखनाथ का शिष्य बना देती है। साथियों, गोपीचंद कान फड़ा के जोगी तो बन गए, लेकिन जब रानी बैनावंती वापस आती है, रात को सुनी सुनी हवेलियों को देख करके चिंतन करने लगी। सुनी हवेलिया खाने की तरह दौड़ रही थी, बारे कन्या और सोले रानियों का रुदन देखती है। अब तो सुबह होते ही रानी पाटन ने पहुंच जाती है गोरखनाथ जी के पास में। महारानी मैनावंती किस तरह से गोपीचंद से कह रही है, गोपीचंद कहिए माता,
1: मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैंने अपनी आंखों का तारा अपनी आंखों से दूर कर लिया। आज ही तेरी माँ तुझे वापस लेने के लिए आई है, चल मेरे लाल वापस महलों में चल।
0: हे माता, तूने तो मेरे पर बहुत बड़ा उपकार किया है, मुझे सांसारिक मोह माया से दूर कर दिया और उस परमात्मा के ध्यान में लीन कर दिया है।
1: नहीं,
0: लेकिन आप वापस चलने की बात करती है। अब मैं गुरु की सेवा में लीन हूँ, आज गुरु गोरखनाथ ही मेरे दाता है, विधाता है, माँ है, बाप है, भगवान है, उसके अलावा भरी दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा।
1: ऐसी बात मत कर बेटा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ।
0: कहिए माता।

0: हाँ तो गोपी चंद।
1: गुरु जी, आपने जो मुझे इस सांसारिक मोहमास दूर करके अमृत की तरफ रास्ता दिखाया है, जो तुमने प्राणायाम योग अभ्यास मुझे बताए हैं, मैं भली भांति करने लगा हूँ। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए।
0: अच्छी बात है गोपी चंद।

0: हाँ तो गोपी चंद
1: जी गुरु जी,
0: आज से आप संपूर्ण साधु बन गए हैं, लेकिन आपका योग जब सफल होगा कि आप अपने महलों में जाकर के अपने बिहार से भीख मांग करके लाएंगे, जब आपका योग सफल होगा।
1: गुरु जी, ये आपने कैसा प्रश्न कर दिया ना गुरु जी, ना ऐसा प्रश्न मेरे सामने मत कीजिए गुरु जी।
0: अगर गोपीचंद, इसमें भी आपकी एक परीक्षा है, अगर आप अपनी बिहाई से माँ कहकर के भिक्षा लाए तो आपका योग सफल हो जाएगा।
1: गुरु जी, जिसके साथ मैंने शादी की है, सात फेरे लिए हैं, मरने जीने का वादा किया है, आज अपनी अर्धांगिनी को किसी से जाके मैं माँ कहूंगा। गुरु जी, कोई दूसरा प्रश्न कर दीजिए, ये बड़ा कठिन सवाल है गुरु जी।
0: गोपीचंद, आपको ये आज आपके गुरु का आदेश है कि आपको भिक्षा माँ कहकर के ही लानी है।
1: तो सुन लीजिए गुरु जी मेरी बात भी।

बर्दाश्त नहीं था मेरी माँ मेरे साथ ऐसा भी करेगी। मैं तो सोच रहा था कि अमर हो जाऊंगा, लेकिन इस बात का पता नहीं था कि ऐसा ऐसा कर्म भी मुझे करना पड़ेगा जिसके साथ शादी कर रखी है, साथ फेले रखे हैं, उसको मां भी कहना पड़ेगा मेरी बात।

इस तरह से गुरु के आदेश पाकर के गोपीचंद चिमटा कमंडल झोली उठा करके चल देते हैं, पहुंच जाते हैं धारानगरी के उन्हीं रणवासों में। हराख निरंजन, भगवान कोई अंदर हो तो मैं अपने गुरु का आदेश पाकर के भिक्षा लेने के लिए आया हूं, मैं अपनी किस तरह से अलग जगाऊंगा, आप सुनते रहिए। अगर भगवान भिक्षा दे तो बाहर आ जाएं, मेरी बात सुन लीजिए।

0: आइए प्यारे साथियों, गोपीचंद अलग जगा रहे हैं रानी पाटंदी के महल के दरवाजे पर। निरंजन माई,
1: आपकी आवाज काफी देर से मेरे कानों में पड़ी हुई है महाराज, मुझे सुनाई दिया और मैं अपने महाराज की आवाज को बखूबी जानती हूँ। क्या हालत
0: के दरवाजे पर एक घंटे से लग जगा रहे थे, एक मुट्ठी चून मिल जाए मेरे गुरु का आदेश था, सो भगवान के दरवाजे पर आ गए, भिक्षा देंगी तो साधु ले लेंगे माई, वरना माई खाली लौट जाएंगे।
1: मैं आपकी माँ नहीं लगती महाराज, मैं तो आपके साथ साथ फेरे लेकर इस घर में आई थी। आज आपने ये गृहस्थ जीवन त्याग दिया है, ये बाणा धार लिया है, आप आइए इन रंग महलों में, ये सब आपका है महाराज।
0: ये रंग महल मेरे काम के नहीं है, मैं गुरु गोरखनाथ का शिष्य हूँ, उन्हीं की सेवा करता हूँ, धुना रमाता हूँ, राख रमाता हूँ, ना मुझे राजभोग चाहिए ना सांसारिक सुख चाहिए। आपको भिक्षा देनी है तो भगवान ड्योढ़ी पर आ जाइए।

0: करिए उस दिन को जब मैंने आपसे कहा था महाराज कि मुझे सपना आया है, आप सपने में जोगी बन गए हो, आप भिक्षा मांगते फिर रहे हो महाराज, आपने हंसकर मेरे सपने को टाल दिया था, लेकिन आज आपने मेरा सपना सच कर दिया महाराज।
1: माई, पिछले जीवन की मेरी कुछ भी बात याद नहीं है। जब साधु का संस्कार किया जाता है तो उसके पूर्व जन्म का मृत संस्कार भी कर दिया जाता है, अर्थात उसके पूर्व में कोई उसका रिश्तेदार रिश्ते में है उसका कोई नहीं होता है। आप कहिए क्या कहना चाहती हैं?
0: सुनिए मेरी बात।

0: प्रेमी बंधु, इस तरह से गोपीचंद अपनी डोडी से भिक्षा लेकर के गुरु के डेरे में पहुंच जाते हैं। भजन और ध्यान में लीन है, काफी समय बीतता जाता है। गुरु गोरखनाथ 1400 शिष्यों के साथ बंगाल नगरी में पहुंच जाते हैं, विकट नगरी में। प्रेमी साथियों, अब तो एक रोज गोरखनाथ जी कहने लगे, बेटे गोपीचंद, सुना है इस शहर में तेरी बहन चंद्रावल ब्याही है, उसकी ड्योढ़ी से भिक्षा ले आओ। गुरु जी, मोह ममता जाग उठेगी, मुझे बहन के दर्शन किए वर्षों बीत गए हैं, लेकिन आज जब मुझे मेरी इकलौती बहन इस साधु के बाने में देखेगी, हो सकता है अपने आप को संभाल ना पाए और मेरी बहन प्राण त्याग दे। गुरु परीक्षा ले रहे थे, कहने लगे, नहीं गोपीचंद, तुम्हें अपनी बहन की डोडी पर जाना है। अब तो गोपीचंद झोली लेकर के बहन की डोडी की तरफ चल रहे हैं, बानी से भिक्षा लेने के लिए। गोपीचंद ने मना कर दिया कि जब बहन की डोडी पर आ ही गया तो अपनी माँ जाई बहन के दर्शन कर जाऊं। बानी ने जाकर कहा कि महारानी, आपके भैया साधु के भेष में दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए खड़े हैं। तन बदन में आग सी लग गई। चंद्रावल के हाथ में कोड़ा उठा लिया के बांधी, तुझे पता है जब मेरा भाई गोपीचंद आता है 5-5 किलोमीटर दूर तक धूल उड़ती चली आती है, इतने रथ घोड़े सेना उनके साथ में होती है। बांदी कहने लगी, नहीं महारानी, आज साधु के भेष में तुम्हारे भाई दरवाजे पर खड़े होकर ये कह रहे कि अपनी बहन के हाथ से भिक्षा चाहिए। बहन चंद्रावल जैसे ही डोढ़ी पर पहुंचती है, अपने भाई को देखती है, कहिए बहन,
1: मैं ये क्या देख रही हूँ कि आज तुमने साधु का वेश धारण कर रखा है।
0: बहन, मेरी माँ की इच्छा थी कि मेरा बेटा अमर हो जाए।
1: नहीं,
0: मैंने अपनी बाप माँ की आज्ञा को मानते नहीं हुए ये वेश धारण किया। बहन,
1: नहीं भैया, दुनिया में ऐसी कोई माँ नहीं होगी जो अपने एक लौते पुत्र को अपनी आँखों से दूर कर दे। हे मेरे भैया, क्या किसी रानी ने तुझे बोली मारी है?
0: नहीं बहन।
1: फिर
0: मैंने बताया ना, मेरे माँ का

0: हुआ, मेरी माँ की इच्छा थी, मेरी माँ की चाहत थी, वो मुझे अमर बनाना चाहती थी। सो आज मैं उस परम योगी गुरु गोरखनाथ का शिष्य बन करके आज तेरी डोली पर भिक्षा लेने के लिए आयो बहन।
1: भैया तेरी ये बहन कुछ कहना चाहती है, मेरी बात को सुनिए।
0: कहिए बहन,
1: सुनिए।

0: ಇದುವರೆಗೆ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನರಸಣ್ಣ ಸೋನಾರ್ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಕರಿಂದ ರಂಗಗೀತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಿ. 8:45 ಸಮಾಚಾರ ಸಂಧ್ಯೆ, 9:00 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ.
1: राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का आग्रह किया. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया, देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है. आश्वासन दिया, वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं. विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक, खेल में सहयोग, समावेशिता और आपसी सम्मान को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुई. ईस्ट बंगाल ने मोहन बागान को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड 17वीं बार डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता जीती. और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना जरूरी. अब समाचार विस्तार.

0: से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें, तो ये जब ब्रेकथ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस बीच राष्ट्र आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। ये दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्पेस साइंस की इस सुविधा को प्राइवेटाइजेशन करके भारत के लिए अपार संभावनाओं का द्वार सज्जित किया गया और जिस तरह की क्षमता प्रोफेसर साराभाई से लेकर के आज तक भारत के महान वैज्ञानिकों ने जिस तरह का मुकाम हासिल किया है, भारत जो आज एक मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में खड़ा है आने वाले समय में विश्व का अग्रणी और लीडरशिप स्टेटस को प्राप्त करेगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है।
4: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इंडिजिनस स्वदेशी हथियार प्रणालियों की क्षमता को भी देखा है और आगे भी रक्षा मंत्रालय के साथ हमारे लैब, हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और प्राइवेट स्टेक होल्डर्स मिलकर अपनी सेनाओं को इंडिजिनस प्लेटफॉर्म से लैस करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और हमने ये साबित किया है कि आत्मनिर्भरता ये हमारी केवल पॉलिसी नहीं है, आत्मनिर्भरता बैटलफील्ड कैपेबिलिटी का एक मल्टीप्लायर है और इस पहल में जीआरएसी तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, ये वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा

0: अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न शामिल है तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। परिषद ने कहा कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति को इसकी इन्फ्लुएंजा से जटिलताएं आ सकती हैं। यदि ये लक्षण गंभीर हों तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार करने के साथ हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।
1: बैठक का मुख्य परिणाम खेल विज्ञान, एआई, डिजिटल बदलाव और एथलीटों के प्रदर्शन में सहयोग बढ़ाने के लिए खेल प्रौद्योगिकी पर ब्रिक्स कार्य समूह का गठन करने का प्रस्ताव है। भारत के ब्रिक्स खेल विनिर्माण सम्मेलन के प्रस्ताव को व्यापक समर्थन मिला है। पहला इस वर्ष नवंबर में उदयपुर में किए जाने वाला प्रस्ताव है। इससे विनिर्माताओं, निवेशकों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों को विशेषज्ञता साझा करके नवाचार को बढ़ावा देने का मंच उपलब्ध होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण पहल ब्रिक्स पारंपरिक और स्वदेशी खेल है जो अक्टूबर में अहमदाबाद में होंगे। इनसे ब्रिक्स देशों की समृद्ध खेल विरासत प्रदर्शित होगी और सांस्कृतिक तथा लोगों के आपसी संबंध सुदृढ़ होंगे। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ऐसे ब्रिक्स खेल साझेदारी करने की अपील की जो केवल घोषणाओं तक सीमित न रहकर खिलाड़ियों और कोचों के आदान प्रदान, संयुक्त प्रतिस्पर्धाओं और ज्ञान साझाकरण के जरिए व्यवहारिक सहयोग के लिए हो। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की सफल बैठक से ब्रिक्स देशों के बीच स्थायी खेल सहयोग का आधार तैयार हुआ है। विशाखापट्टनम से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
0: केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने और देश की समृद्ध विरासत को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने में कला और संस्कृति के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में कला तरंगिणी दिल्ली कला महोत्सव में श्री सोनोवाल ने कहा कि महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की रचना पारिजात हरण अंकीय नाट प्रस्तुत करने के लिए देश भर के कलाकार श्रद्धापूर्वक एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि श्रीमंत शंकरदेव ने कला, संस्कृति, नृत्य और संगीत के माध्यम से समाज में सांस्कृतिक मूल्यों को लाने के लिए अनेक प्रयास किए।
2: महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने भारत में एक संस्कार लाने के लिए जो भी उन्होंने कदम उठाई है, कला संस्कृति की द्वारा, नित्य गीत की द्वारा, इसकी वजह से आज हम 21वीं शादी में दुनिया में अपना मर्यादा पूर्वक परिचय बनाने में हम सफल हुई है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अपील की है कि वो महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीति छोड़े और संसद में इसका समर्थन करे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस महिलाओं के समर्थन की केवल बात करती है। उन्होंने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की है।
3: देश भर में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, देश की संसद में वो संसद का गौरव बढ़ाएं, ऐसा प्रस्ताव, ऐसा कानून पारित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से ये अपील की है कि वो त्वरित रूप से महिला आरक्षण का ये संकल्प देश भर में लागू करने के लिए सहयोग करें।
0: राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कल्ट्स एजुकेशन ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1.5 लाख से अधिक लोगों को एआई और क्लाउड साक्षरता के बारे में आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके अलावा 10,000 भागीदारों को रोजगार योग्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि इस पहल में विकसित भारत का विजन परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा कि भारत नवाचार, तकनीक और प्रतिभा का वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा के लिए मॉस्को पहुंच चुके हैं। वे रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे।

0: देंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। दो दिन का ये सम्मेलन भौतिक और आभासी दोनों माध्यमों से संयुक्त रूप में आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक एमएल जाट ने आज कहा कि फसल सुधार, कृषि विकास तथा नीति निर्धारण प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का मृदा डेटाबेस और सूचना प्रणाली तथा भूमि उपयोग नियोजन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश की प्राथमिकताओं और परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुरूप ये संस्थान सही दिशा में प्रगति कर रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने गंगा नदी के संरक्षण से संबंधित नियमों में हाल ही में किए गए बदलाव पर एक याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक पीठ ने इस महीने की शुरुआत में जारी की गई एक अधिसूचना पर संज्ञान लिया है। अधिसूचना में कथित तौर पर गंगा नदी को इसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में निर्माण निषेध क्षेत्र हटा दिया है। अधिकरण का मानना है कि बदलाव वर्तमान पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन है। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं शक्ति सिंह।
1: ईस्ट बंगाल एफसी ने 135वां ड्यूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। ईस्ट बंगाल ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेले गए फाइनल में मोहन बगान सुपर जायंट्स को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड बराबरी करते हुए 17वीं बार ड्यूरंड कप जीता। ईस्ट बंगाल के एडमंड लाल रिंदिका ने पहले हाफ में शानदार हैट्रिक लगाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उधर महिला हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। नीदरलैंड 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं। और क्रिकेट में कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 5 विकेट पर 300 रन बनाए। देवदत्त पड्डीकल ने 117 रन, शुभमन गिल ने 50 और यशस्वी जायसवाल ने 45 रन की पारी खेली। भारत पहला टेस्ट जीतकर फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया, देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है। आश्वासन दिया, वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक, खेलों में सहयोग, समावेशिता और आपसी सम्मान को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुई। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना जरूरी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges private space sector to build global aura of innovation as India celebrates National Space Day. Defence Minister Rajnath Singh stresses self-reliance in shipbuilding and maritime sectors. ICMR clarifies no new strain of swine flu identified in the country, assures current vaccines remain effective. BRICS Sports Ministers meeting concludes in Visakhapatnam with adoption of joint declaration to strengthen cooperation, inclusiveness and mutual respect in sports. In football, East Bengal lift Durand Cup for the record 17th time, defeating arch rivals Mohan Bagan in Kolkata. And in the FIH Hockey World Cup, India to face Australia in Netherlands tonight in a must-win Pool E fixture for a semi-final berth. Prime Minister Narendra Modi has urged private sector in space research.